लाइफ इज ऑलरेडी शॉर्ट, यू शुड एटलीस्ट स्पेंड इट विद अ टॉल गाय. मैं बचपन से लेकर अब तक ये बिलीव करती हूँ, एंड एंड दिस इज नॉट लाइक अ कमेंट्री ऑन पीपल जो बहुत लंबे नहीं है, बट फॉर मी एनी गाय हु इज ओवर 6 feet 2 inches इज माई काइंड ऑफ गाय. इन फैक्ट इफ आई लुक बैक इन द हिस्ट्री ऑफ माई डेटिंग, मेरे सारे बंदों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, दे आर ऑल सुपर टॉल. तो अगर एक दूसरे को पीटना चाहता है, नो वन हैज अ हाइट एडवांटेज, दे आर ऑल 6'2" एंड अबव. बट यू नो वट, आई एम नॉट द ओनली गर्ल इन द वर्ल्ड जिसे लंबे आदमी पसंद है. इट टर्न्स आउट दैट टॉलर मैन एक्चुअली हैव अ डेटिंग एडवांटेज, क्योंकि साइकोलॉजिकली मोर पीपल फॉल इन लव विद टॉलर मैन. सो इट टर्न्स आउट कि मैं बस एक स्टेटिस्टिक बन के रह गई हूँ, पर आई डोंट रियली केयर. इफ यू आर अ टॉल पर्सन हु 6'2" एंड अबव, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फिनोमेना. ठीक है, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम, यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट फिगर आउट योर हाइट एंड कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: पता नहीं।
1: अपने बॉयफ्रेंड को बोल रहे हो कि जानू मानू आई एम ऑन अ डाइट, लेकिन जानू मानू को मिलने से पहले जो दो पराठे आप ठूस के जाते हो उसकी सच्चाई आपके बॉयफ्रेंड को पता चल गई, कैसा लगेगा उसे यार?
2: द सीक्रेट बॉक्स।
1: अगर ऐसे ही सीक्रेट कन्फेशंस आपकी जिंदगी में है अबाउट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा एंड FB। और राइट नाउ मेरे साथ हैं मेरे मिस्ट्री कॉलर। हेलो मिस्ट्री कॉलर।
3: हाय रोशी, हाउ आर यू?
1: मैं तो अच्छी हूँ। आपने मुझे जब अपनी कन्फेशन भेजी ना तो मैं हंस हंस के थोड़ी सी मर गई थी कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं सच में। और अब मैं वो कन्फेशन आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ।
3: शुक्र है आप सिर्फ हंस रहे थे, मेरे को नहीं लगा, मुझे लगा आप सीधा कहोगे जी
1: मतलब
3: कैसे लोग
1: हैं। सोचा तो मैंने यही था कि जी कैसे लोग हैं, बट मैं बोलना नहीं चाहती थी।
3: देखो भाई ऐसा है कि भाई मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे पूरी तरह से फ्रेंड जोन किया हुआ है, ठीक है। मतलब आई यूज टू हैव फीलिंग्स फॉर हर, बट वो ना डाई डाउन हो गई। बट लेकिन ना वो अब वो ना देखो अब ऐसा है कि ना तुम्हें ना छेड़ना नहीं चाहिए
1: करे ऑब्वियसली
3: फीलिंग को ना, यू नो मैंने करी थी ना सेटल, उसको मैंने कर दी थी सेटल कि भाई नहीं रहने दे छोड़। अब लेकिन क्या है कि ना उसका बॉयफ्रेंड बना हुआ, ठीक है यार। वो मेरे साथ ना मेरे को मतलब अब वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करे ना ये सारी बातें, वो मेरे को बताती है वो क्या करती है क्या नहीं करते, ठीक है। वो पूरी की पूरी सेक्स स्टोरीज यार मेरे को सुनाती रहती है अपनी। तो आई डोंट नो, देखो भाई मेरे को तुम बार बार छेड़ोगे तो वो छिड़ जाता है इंसान,
1: राइट। तो वो आपको कैसे छेड़ रही है? वो तो अपनी आपको स्टोरीज बता रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड और मैं ये करते हैं, हम गैसिंग यही बता रही है।
3: यार प्रॉब्लम दोस्ती ये है कि फिर जब वो बताती है ना तो फिर उसके अंदर उस बंदे की जगह मेरी शक्ल मेरे को खुद दिखने लग जाती है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है यार, मतलब आई एम गेटिंग वेट ड्रीम्स मैन, सॉरी।
1: You know what I'm glad about, Mystery Caller, कि आपने जब मुझे ये बताया है तो आपने ये नहीं बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम है, बिकॉज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं तो आपको यही बोलती कि यू कैन मेक फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द वॉशरूम, बट लकीली इट्स जस्ट सेकंड।
3: वॉशरूम भी गए थे बट वो हम जो स्टेशन है ना वो पार हो चुका है वो वाला, you know? Now it's getting into my head.
1: You know, only, I'm glad that it's getting only into your head. मैं और जानना नहीं चाहती हूँ यार, मिस्टी कॉलर बहुत हो गया आपका। क्या मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ? और जब मैं रोशिफाई करूंगी मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करके रोशिफिकेशन लें, लेकिन गंदे विचार ना सोचें। आप ऐसा कर सकते हो? आपकी आवाज सुन के लग तो नहीं रहा, बट हियर इट गोज। आपसे बात करके बहुत मजे आए मिस्ट्री कॉलर। आई होप योर बेस्ट फ्रेंड वॉज नॉट लिसनिंग टू दिस। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह ऐसा कन्फेशन है, आई टोटली वांट टू हियर इट। सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है फॉर असली पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑफ कोर्स एज अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लेयर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है साडी सुन। तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, साडी सुन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी, पांच हफ्तों से इस काउंटडाउन पर अपना धावा बना के बैठा है, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: नंबर 10।
2: हाँ चुप कर लंघ जावे, कोल दी तू संघ जावे, को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: समय ढक जाए।
1: कहाँ है वो लोग, नजर नहीं आ रहे जो बोलते रहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं। ये वाला सुनिए, अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। व्हाट अ बैंगर ऑफ अ सॉन्ग। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, पूरे दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, तो कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स बाय एन आर्टिस्ट जिनकी आवाज सुनते ही ना, मतलब मेरे को एकदम वो मजे आ जाते हैं। यू नो देयर आर दीज वॉइसेस व्हिच मेक यू फील रियली हैप्पी। वो बोलते हैं खनक है उनकी आवाज में। आई एम टॉकिंग अबाउट एश किंग, जिन्हें मोस्ट पॉपुलरली हम जानते हैं एज वॉइस बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
3: आई लव यू।
1: कुछ बात उनकी आवाज में सुनते ही ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। एंड इस आवाज को ढूंढ के हमारे पास लाए थे AR रहमान। साल 2009 में दिल्ली 6 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दैट कोलैबोरेशन इज दैट उस समय एश किंग की हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, वो बस UK से आए थे, बट AR रहमान सर ने उन्हें सुना एंड ही वॉज लाइक आप मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। एंड तब एश किंग ने AR रहमान के लिए ये वाला गाना गाया। गाने का नाम है दिल गिरा दफतन। दिल्ली 6 की बहुत बड़ी एल्बम मसक अली अर्जियां के पीछे अगर इस गाने को भूल गए थे तो वापस इसको याद कर लीजिए। तब से लेके अब तक एश किंग हैज बीन द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक मेहरबान, TMO। 2019 में उनका एक इंडी पॉप गाना आया था कॉल्ड हाई।

There's something about Ash King's voice which just naturally draws you towards this song. आप connect कर जाते हो. वो कभी गाने पे हावी नहीं होते हैं, बल्कि he lets you experience that song. तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए. नई नवेली entry debut कर रही है सीधा Ash King की आवाज में. गाने का नाम है Kinniya Soni. ये गाना debut कर रहा है this week on Gaana number 8. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है Kanika. Enjoy. Number 8.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: आदित्य रिखारी कुटले खां की आवाज रावटोर का म्यूजिक कोक स्टूडियो भारत का गाना दिस वाज ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनूप जैन की आवाज में, गाने का नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है वाज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक, ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप स्टार्स ऑफ द म्यूजिक सीन। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना ए अजनबी इन द वॉइस ऑफ आदित्य रिखारी एंड कुटले खां, एक कोक स्टूडियो भारत का गाना। किसी भी आर्टिस्ट के लिए गाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है एक कोक स्टूडियो भारत का गाना करना, एंड आदित्य रिखारी पिछले कुछ ही सालों में वो चोजन पॉप स्टार बन चुके हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, ये स्टार बनने के मायने बदल गए हैं। स्पेशली पॉप म्यूजिक में रिवाइंड करूं, 20 साल पहले आप चूज किए जाते हो, आपकी एल्बम आती है, आपको ब्रेक मिलता है, तब आप फेमस होते हैं। लेकिन अब पहले ऑडियंस आपको देखती है, डिसाइड करती है, आपके साथ एंगेज करती है, तब आपको आपका ब्रेक मिलता है। एंड आदित्य रिखारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लॉकडाउन के दौरान अपने कमरे से अपने गाने अपलोड कर रहे थे, पर उनके गाने ऐसे फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, बिकॉज वो हमको हमारी ही कहानी सुना रहे थे। एंड देन उनका गाना आया कॉल्ड फासले। इस गाने ने उनको म्यूजिक मैप में पिन कर दिया था, एंड देन केम समझो ना। इस गाने के बारे में तो मैं जितनी बात करूं कम है। इट गॉट अडैप्टेड इन अ कार्तिक आर्यन मूवी, जो एक दिल्ली से आए यंग सिंगर सॉन्ग राइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से आदित्य रिखारी का सबसे बड़ा गाना इस साहिबा। उनके जितने कॉन्सर्ट होते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करते हैं, आप कहीं चले जाए, एक गाना जो हर फैन उनसे डिमांड करता है कि प्लीज ये वाला गाना गा दीजिए, वो गाने का नाम है साहिबा। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन आदित्य रिखारीज बेस्ट सॉन्ग दिस इज साहिबा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

आदित्य निगारी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, दैट वॉज साहिबा। दिस सॉन्ग इज अ रिमाइंडर दैट एक अच्छे गाने को किसी बड़ी फिल्म या बड़े हीरो की जरूरत ही नहीं होती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आदित्य निगारी ऐसे और एग्जाम्पल्स हमको देते जाएंगे। काउंटडाउन में आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना इज बाय संजू राठौर, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स। 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांझ सिया डेविड गेटा का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आए, मेरे साथ कनेक्ट करिए, कोई गाना सजेस्ट करना है, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को।
0: The song we're going to feature this week is
3: सांस

0: कभी।
1: गाने का नाम है बूंदे बाय द सिल्क रूट। ये गाना 1998 में आया था, सिल्क रूट द बैंड की डेब्यू एल्बम बूंदे का ही पार्ट था। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी, सिल्क रूट ने पॉप म्यूजिक स्पेस में अकूस्टिक गिटार, फोक इन्फ्लुएंसेस एंड सॉफ्ट मेलोडी, वेरी पोएट्री फर्स्ट गानों को इंट्रोड्यूस किया था। बैंड के लीड वोकलिस्ट मोहित चौहान, बैंड मेंबर्स अतुल मित्तल, केम त्रिवेदी एंड केनी पुरी, उनकी म्यूजिक आइडेंटिटी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी म्यूजिक वीडियोज, द वे देयर म्यूजिक ट्रैवल इज समथिंग जो आज भी हम जानते हैं। इसी एल्बम का पार्ट था डूबा डूबा, जो हर घर तक पहुंच गया। पर उस एल्बम में और बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जिन्हें आपको कभी फुर्सत लेके सुनना चाहिए। और अगर आप सच में उनकी म्यूजिकलिटी को जेन्युइनली एंजॉय करना चाहते हो, तो ये वाला गाना बूंदे उसे परफेक्टली डिफाइन करता है। गाने के लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे और उसमें बारिश ना सिर्फ ऐसे मौसम का पार्ट नहीं है, बल्कि बूंदों को यादों से कंपेयर किया गया है, किसी की खुशबू से कंपेयर किया गया है, एक ऐसी प्रेजेंस से कंपेयर किया गया है जो हमारे सामने नहीं है बट आप हर जगह महसूस करते हैं। आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो प्रोडक्शन में भी आपको 19-20 लग सकता है, बट द इमोशन इज सो फ्रेश एंड शायद इसीलिए ये एक प्रॉपर क्लासिक है। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सिल्क रूट द बैंड का गाना मोहित चौहान की आवाज में, दिस इज बूंदे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

व्हाट इज दिस सॉन्ग, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की मेमोरी में ऐसे फ्लोट कर रही थी। मोहित चौहान की आवाज, सिल्क रूट द बैंड का गाना, दैट वॉज बूंदे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। पिंच मी अश्काय, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स वी हैड सो फार। एट RJ कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अश्काय माई साउंड प्रोड्यूसर, और मैं आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। 90s 2000s का वो इंडी पॉप गाना जो आज भी आपके लिए सुपर स्पेशल है, हमसे आके शेयर करिए। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट इज अगेन अ दिलजीत दोसांझ सॉन्ग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप किया ये गाना। गाने का नाम है डीलर। 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 3।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर इस हफ्ते हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी और गाना नंबर 9। एक नई नवेली एंट्री, एश किंग का गाना किनिया सोनी ने डेब्यू किया है और गाना नंबर 8। This song is getting stronger by the week. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है this week on गाना नंबर 7।
3: कायर जो थे वो शायर बने।
2: उसके बाद आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, एक और कोक स्टूडियो भारत का गाना ए अजनबी on गाना नंबर 6। संजू राठौड़ का बैंगल्स on गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। बैक टू बैक बाय दिलजीत, उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड नाउ फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बंजारे का गाना बैरन 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2 एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन मिट्टा रौर स्वरा वर्मा की आवाज में, गाने का नाम है शीशा, वंस अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैरन ऑन गाना नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

तेरी चुक गई थी आंख सर माँ कहना बैरन गोरा गोरा चाम तेरा काले काले बाल तेरे डूब गया मैं बिली बिली आँखियाँ मैं बैरन तेरी आसी के आसी जमा जहर छोरी रहा इस

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
2: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है। इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग, जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा
0: नंबर 20।

कॉकटेल 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. फिल्म्स दैट क्रिएटेड सम एक्साइटमेंट एट द स्टार्ट, लेकिन उसके बाद वेल दे जस्ट एग्जिस्ट. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई, पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए, तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं? शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो, सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा हैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं, सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा. और नंबर 17, दिस इज मस्कारा. नंबर 17.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 16.

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. ये था मैं और तू by Jasmine Sanilas. And I don't know अगर धुरंधर एक सच्ची कहानी है या it's fiction. But Bollywood filmmakers को सच्ची कहानियाँ पसंद बड़ी हैं. Which is why we love our biopics. And एक और biopic देखने के लिए अब जनता उत्सुक है. सौरव गांगुली की biopic दादा. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती. सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल. And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ. एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी. सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे. एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग भी तो दिखाओगे. और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं. इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं. क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं, वक्त मांगती है. सिर्फ एक एम एस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क फॉर सम रीजन, पर उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच. नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल. गाना याद है ना? Well, ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर 15.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. And then तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadoo bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request.

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलो यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग दैट नाउ मोर देन एवर बिफोर। यू नो दे डिड काइंड ऑफ इन लाइक 13-15, देयर वाज लुटेरा एंड रामलीला इन 2013, देयर वाज दिल धड़कने दो बाजीराव मस्तानी इन 15, नाउ इट्स लाइक खिलजी, सिम्बा एंड कर्नी बॉय। इट्स लाइक wow, so it's a conscious endeavor to you know showcase that versatility, and it's all happening, so I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer, ab wo superstar ban chuka tha, use apne talent ka andaaza tha, use pata tha ki wo kitna acha actor hai. Ronis ki jagah yakeen aa chuka tha, lekin uski energy abhi utni hi badi thi jitna uska ambition, lekin abhi wo bechain tha. Aur phir aaya teesra Ranveer. खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। लेकिन ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची टॉप 20। नंबर वन।

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, बट फिर मिलूंगा। इनफैक्ट मैं भी वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Michi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Rampage free.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

झूमे गाओ हरे लाऊ चबाओ यू पटका है ये देसी का मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

0: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Let's go crazy.

गुड मॉर्निंग मेरी मिर्चीदार, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। और अगर अभी फिलहाल तुम कॉफी बना रहे हो, ट्रेन पकड़ रहे हो, ऑफिस ड्राइव पर हो, या फिर बस लाइफ को 5 more minutes बोलकर दोबारा से ब्लैंकेट में बुरेटो बनने की तैयारी कर रहे हो, वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर तुम मंडे हो या फ्राइडे हो, सेम एनर्जी मिलती है तुम्हें, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इन्फ्लेशन सब चीजों में हो सकता है लेकिन फील गुड वाइब्स में नहीं हो सकता। आज के शो में होगा बॉलीवुड का तड़का, देसी नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा लाइफ का ड्रामा, म्यूजिक, मस्ती, हंसी की अनलिमिटेड रिफिल्स, और वो कॉन्वर्सेशन जो बिल्कुल वैसी लगेगी जैसे अपने पुराने दोस्त के साथ बैठकर चाय पर कर रहे हो। तो सीट बेल्ट लगा लो, या अगर घर पर हो तो टोस्टर से पहले रेडियो ऑन रखो। बर्न टोस्ट से ज्यादा डेंजरस है मंडे मॉर्निंग के ब्लूज। आई नो, अभी मंडे मॉर्निंग नहीं चल रहा है बल्कि वीकेंड की वाइब्स हल्की हल्की सी शुरू हो चुकी है। तो धीमी आंच पर लगाते हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए। मैं हूँ प्रिसला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाफट से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में। और चलो टाइम मशीन को रिवर्स गियर में डालते हैं, बिकॉज ऑन दिस डे क्या हुआ ये पता करना जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं 622 में, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने हिज्र शुरू की, मेका से मदीना की माइग्रेशन, जिसने इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की। फिर आया 1054, जब ग्रेट स्किज्म हुआ और क्रिश्चियनिटी के वेस्टर्न कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस परमानेंटली अलग हो गए। फिर 1790 में रेजिडेंस एक्ट साइन हुआ और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को अमेरिका की परमानेंट कैपिटल बनाने का रास्ता तय हुआ। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1945 में, जब न्यू मेक्सिको डेजर्ट में हुआ ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ एटॉमिक एज। 1969 में गूज़बम्प्स वाला मोमेंट, अपोलो 11 कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ, एक ऐसा सफर जो इंसान को पहली बार मून तक ले गया। और 1999 में एक दुखद खबर, जॉन एफ कैनेडी जूनियर, उनकी वाइफ कैरोलिन एंड उनकी सिस्टर इन लॉ की प्लेन क्रैश में जान चली गई। नियम माथास विनियर। और ऐसे ही कुछ फैक्ट्स तुम्हें पता हो आज के दिन के बारे में, तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और अभी मैं चलाती हूँ कुछ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए, तब तक तुम चिपक के बैठो यहीं पर, कहीं जाना नहीं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग मैं मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और फीफा ने ऐसा प्लॉट ट्विस्ट दे रखा है ना आजकल लाइफ में कि बॉलीवुड की जरूरत ही नहीं पड़ रही है।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: इंग्लैंड ने 55th मिनट में एंटनी गॉर्डन के गोल से लीड ले ली और लगा मैच उनका हो गया, लेकिन फिर एंट्री हुई लायनल मेसी की। दो मैजिकल असिस्ट पहले एंजो फर्नांडिस ने 85th मिनट में इक्वलाइजर मारा और स्टॉपेज टाइम में लाउटारो मार्टिनेज ने विनर डाल दिया। फाइनल स्कोर हुआ अर्जेंटीना का 2 इंग्लैंड का 1। अर्जेंटीना अब लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है और सैनिको न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में स्पेन से टकराने भी वाली है। और मेसी सिर्फ 2 असिस्ट ही नहीं, टूर्नामेंट में अब तक उनके 8 गोल्स और 4 असिस्ट हैं और वो गोल्डन बूट रेस में भी टॉप पर पहुंच चुके हैं। 39 इयर्स की एज में भी बंदा फुटबॉल को चीट कोड की तरह खेल रहा है बॉस। इंग्लैंड कोच थॉमस टुकेल का कहना है, वी प्रिपेयर्ड फॉर मेसी ऑल वीक एंड नन ऑफ इट वाज इनफ। और सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मोमेंट वायरल हो रहा है आजकल मेसी से रिलेटेड। 2007 की एक आइकॉनिक फोटो है जहां पर यंग मेसी चैरिटी फोटोशूट के दौरान बेबी लामिन यमाल को नहला रहे हैं। अब देखो यार किस्मत का कनेक्शन, संडे को वही यमाल की स्पेन और मेसी की अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने होने वाली है। दैट्स अ प्रीटी कूल फन फैक्ट राइट। तुम्हें भी ऐसे फुटबॉल के कुछ फन फैक्ट्स पता है तो मुझे बताओ। मिर्ची प्रिस मेरा हैंडल नेम है इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए चिपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: तेरी मम्मी की जय।

बॉडी लटीन चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: शुभ बादशाह।
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मौसम का हालचाल ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। देखो अभी टेम्परेचर हो रहा है 72 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास, इट्स मोस्टली क्लाउडी लेकिन फील हो रहा है 73 डिग्रीज के आसपास, यानी कि वेदर कह रहा है मैं सिर्फ एक डिग्री ज्यादा हूँ लेकिन एटीट्यूड मेरा कम से कम 10 डिग्री ज्यादा है। गुड न्यूज ये है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सनशाइन फुल अटेंडेंस देने वाली है आज, तो अगर लंच ब्रेक में थोड़ी सी फ्रेश हवा या क्विक चाय वॉक का प्लान तुम्हारा बना हुआ है ना, टुडे इज योर डे। शाम को 5 बजे के बाद क्लाउड्स जो है फिर से गेस्ट अपीयरेंस देने वाले हैं, सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर तुम्हारा मूड अचानक से थोड़ा बादलों वाला हो जाए। आज का हाई रहने वाला है 92 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास और लो जाएगा 72 डिग्रीज के आसपास। कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी रिलीफ है आज, क्योंकि कल मर्क्यूरी 98 डिग्रीज तक पहुंच गई थी और आज का वेदर बोल रहा है मैं स्पाइसी हूँ लेकिन एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं हूँ। रेन लवर्स, आज थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पिछले 24 घंटों में 4 मिलीमीटर्स की बारिश देख ली है लेकिन अगले 24 आवर्स में फोरकास्ट में 0 मिलीमीटर्स बता रहा है, यानी कि अम्ब्रेला को आज घर पर रखा जा सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, एयर क्वालिटी अलर्ट आज भी जारी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 149 जो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स की कैटेगरी में आता है। देखो अगर तुमको या किसी को भी एस्मा एलर्जीज या ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ी सी लिमिट में करना बेटर होगा आज के दिन। बाकी हाइड्रेटेड सबको रहना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज द वेदर इज वार्म, एंड साथ साथ में लेयर के प्लेयर बनो एंड व्हाइल गोइंग आउट वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50++++। और अब वेदर बात हो गई है तो मिर्चीदार बैंगर सुन लेते थोड़े, तब तक के लिए तो मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवर का 3, जहाँ पर तुम्हें मिलने वाली है अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स 22nd ऑफ जुलाई से ब्राजील के कई इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएगा। कॉफी, बीफ, एयरक्राफ्ट, एनर्जी प्रोडक्ट्स और कुछ और कैटेगरीज को इस टैरिफ से एग्जेम्पशन मिलेगी। नंबर 2 पर इंडिया ने शिप ओनर्स और रिक्रूटमेंट कंपनीज को एडवाइस किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते शिप्स पर फिलहाल इंडियन सी फेयरर्स को डिप्लॉय ना किया जाए। ये एडवाइजरी रीजन की सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाद जारी की गई है। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स मैरिटाइम इंडस्ट्री में है तो उनकी सेफ्टी के लिए अपडेट जरूरी है। एंड फाइनली नंबर 3 पर उड़ीसा के पुरी में आज शुरू हो गई है दुनिया भर में मशहूर लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। लैक्स ऑफ डिवोटीज इस ग्रैंड प्रोसेशन का हिस्सा बन रहे हैं, जहां पर लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र और देवी सुभद्रा के रथ गुंडीचा टेम्पल की तरफ रवाना होते हैं। डेटीज वहाँ अगले 9 दिन तक रहने वाले हैं। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सबको मिर्ची की तरफ से वार्म विशेस। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर के 3 फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ऑलराइट, गानों से एक छोटा सा ब्रेक. गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. अब चलो बॉलीवुड की दुनिया से एक खबर सुनते हैं. फिल्म मेकर हनी त्रिहान ने एक इंटरेस्टिंग बात शेयर की है अबाउट दिलजीत दोसांझ रिलेटेड टू हिज फिल्म सतलज, जहाँ पर दिलजीत ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा का रोल निभाते दिखाई दिए हैं. हनी के अकॉर्डिंग जब उन्होंने स्क्रिप्ट दिलजीत दोसांझ को दी तो दिलजीत ने सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को अपने माथे पर लगाया और कहा कि वाहेगुरु, ऐसे इंसान का रोल करने के पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ, ये तो शर्म की बात होगी. और डायरेक्टर ने बहुत इंसिस्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक फी जरूरी है, तो दिलजीत ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, एक रुपए दे देना. अब वैसे तो इंडस्ट्री में फीस करोड़ में जाती है, लेकिन कभी कभी एक रुपए की वैल्यू भी स्टैंडिंग ओवेशन जीत सकती है. और ऑनेस्टली यही स्टोरीज रिमाइंड करती हैं कि कुछ रोल सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी होते हैं. वैसे हाई फाइव टू यू अगर तुम भी दिलजीत के फैन हो मेरी तरह. मुझे फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चलाते कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज 16th of जुलाई को अगर तुम्हारा जन्मदिन है तो मेरी तरफ से एक टाइट वाली झप्पी और एक मुआ वाली पप्पी। आज ऑफिशियली वो दिन है जब दुनिया थोड़ी सी ऑसम हो गई थी, क्योंकि आज तुम तो आए हो इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारे साथ साथ बर्थडे स्क्वाड में कुछ सेलिब्रिटीज भी है। वो कौन कौन है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले द हिलेरियस विल फेरल। इनकी कॉमेडी को देखकर लगता है कि यार इनसे ज्यादा फनी कोई हो ही नहीं सकता। आई एब्सोल्युटली अडोर दिस।

मैन. बॉलीवुड की ग्लैम क्वीन कैटरीना कैफ भी आज ही के दिन इस धरती पर आई थी, बॉर्न हुई थी. शी ग्रेस्ड द वर्ल्ड विथ हर स्टाइल एंड डांस मूव्स. फुल पैकेज लेकर आई थी वो. एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी में थोड़ी बहुत गड़बड़ रही उनके शुरुआती करियर में, लेकिन आई थिंक अब जाकर वो बातें ठीक हो चुकी है. सो हियर्स विशिंग हर हैप्पी बर्थडे विथ सम अमेजिंग सॉन्ग्स एंड म्यूजिक लवर्स के लिए लेजेंडरी ड्रामर स्टुअर्ट कॉपलैंड ऑफ द पुलिस एंड सॉन्ग राइटर सिंगर रूबेन ब्लेड्स, जिनकी म्यूजिक ने लैटिन वर्ल्ड में अपनी अलग ही पहचान बनाई है. तो अगर आज तुम भी कैंडल्स ब्लो कर रहे हो तो मुझे शाउट आउट भेज सकते हो अपने लिए या किसी और के लिए. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. इंस्टा और एक्स पर सेम है, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चिपक के बैठे रहो यहीं पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स. मेरा नाम है प्रिस, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: अरे अरे अरे, ज्वेलरी शॉपिंग का मन है, गोल्ड खरीदने का मन है, तो गोल्ड की अपडेट तो सुनकर जाओ। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ऑन वर्चुअल मॉर्निंग्स।
1: राज रोज विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,001, $4,001 पर ट्रेंड्स के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से भी थोड़ा सा नीचे हैं। और राज ज्वेल्स के साथ आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, लेटेस्ट सिलेक्शन ऑफ डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी, पोलकी एंड अनकट डायमंड्स, प्लैटिनम सेट इन विद डायमंड। राज ज्वेल्स की कलेक्शन के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट पे, बिना किसी हिडन फी के 9 मंथ की फाइनेंसिंग के लिए आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 किश्तों में पैसे दें राज ज्वेल्स को। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड दैट्स इट फॉर योर गोल्ड रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसला। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमों बीबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

Hey, good morning. मैं हूँ प्रसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम्हारी मॉर्निंग्स, और आप पता करते हैं अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है इन सबसे पहले अमेरिका से एक बिग पॉलिसी अपडेट. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 के लिए प्रपोज्ड $1.5 trillion मिलिट्री बजट की अनाउंसमेंट की है. उनका कहना है कि इससे नेशनल डिफेंस और जॉब्स दोनों को सपोर्ट मिलेगा. साथ ही एक पॉलिसी रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है कि ईरान कैंपेन की कॉस्ट June 2026 तक $100 billion से ज्यादा हो चुकी है. नंबर टू पर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन अभी भी हेडलाइंस में है. ईरान ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस क्लेम को रिजेक्ट किया है कि तेहरान टॉक्स के लिए अप्रोच कर रहा है. ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि फिलहाल नेगोशिएशन का कोई प्लान नहीं है और फोर्सेस डिफेंस पर है. सिचुएशन अभी क्लोजली वॉच की जा रही है. एंड नंबर थ्री पर इंडिया के दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर एक इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दिया है. कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि उनके हंगर स्ट्राइक के दौरान डेली मेडिकल मॉनिटरिंग इंश्योर की जाए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स टाइमली मेडिकल केयर देते रहें. कोर्ट ने कहा है एवरी लाइफ इज प्रेशियस. वांगचुक का हंगर स्ट्राइक का ये 19th डे है और उनकी हेल्थ अपडेट पर अथॉरिटीज नजर बनाए हुए हैं. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. मेरा इंस्टाग्राम और एक्स पर हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ऑलराइट, वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला और अब चलो कॉफी सिप करते हुए, चाय पीते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, लेट्स फाइंड आउट हमारे सितारे आज क्या कह रहे हैं।
1: मिर्ची राशि जोन
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज बोरिंग काम को पहले पहले खत्म कर लो। कल एक्साइटमेंट लाइन में खड़ी है तुम्हारे लिए, वेट कर रही है। तुम्हारा लकी कलर आज है ब्लैक, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बॉस मोड ऑफ, फन मोड ऑन। इतने दिन मेहनत की है, अब दोस्तों को कॉल करो, उनके साथ चिल मारो, वीकेंड का वेट क्यों करना है यार। लकी कलर फॉर यू इज फिरोजी, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, जो चैलेंज सबको इम्पॉसिबल लग रहे हैं वही आज तुम्हारा माइक्रोब मोमेंट बन सकते हैं। बिल्ली in yourself and act. Lucky color for you is lemon and lucky number is 9. Cancer yani kharak rashi, career to bahut important hai beta, lekin aaj kisi apne ko quality time dena usse bhi zyada important hai. To phone uthao, phone lagao, sirf scroll mat karte raho. Lucky color for you is white, lucky number is 2. Leo yani ki sih rashi, party invitations aa sakti hain, bas ye yaad rakho ki fun karo, overacting mat karo. हीरो बनना है, हेडलाइन नहीं बनानी है। लकी कलर फॉर यू इज ओकर, लकी नंबर इज 31। वर्को यानी कन्या राशि, मनी मैटर्स में आज इम्पल्स शॉपिंग को नॉट टुडे बोल दो। कार्ट में ऐड करना इजी है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना काफी बड़ा इमोशनल डैमेज देकर जाएगा तुम्हें। लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट कलर, लकी नंबर इज 17। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ राशि जोन। प्रिसिला थोड़ी सी देर में वापस आएगी राशि जोन का पार्ट 2 लेकर, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड गो एंड चेक आउट माय सोशल्स। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: Bye.

0: हेलो, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, पर वो टाइम जब हम यूनिवर्स की बातें सुनते हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, पार्टनरशिप्स में आंखें खुली रखो, ट्रस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस पहले पढ़ लेना। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज सोशल बैटरी लो रहने वाली है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मी टाइम सेल्फ केयर का VIP पैकेज होता है। लकी कलर फॉर यू इज क्रिमजन, लकी नंबर इज 24। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज अगर कोई अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहा है तो उसमें कैमियो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लाइक यू ऑलवेज डू। पीस इज द न्यू फ्लेक्स। लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू, लकी नंबर इज 5। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, ऑफिस में आज अपना बेस्ट वर्जन दिखाओ, अपना काम खुद अपनी इंट्रोडक्शन बन सकता है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 18। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आइडियाज तो आज ब्लॉकबस्टर आने वाले हैं, बस एक्साइटमेंट में होल्ड माय कॉफी टाइप के एक्सपेरिमेंट्स मत कर बैठना। लकी कलर फॉर यू इज नेवी ब्लू, लकी नंबर इज 33। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, यूनिवर्स देख रहा है तुम्हें, यूनिवर्स कह रहा है कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो, तुम जितना अपने बारे में सोचते हो उसे कहीं ज्यादा केपेबल हो। लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट ग्रीन, लकी नंबर इज 7। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड चेक आउट माई सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

बस यार आज का मिर्ची मॉर्निंग्स का सफर यहीं पर खत्म होता है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, लेकिन जाने से पहले थोड़ी बहुत बातचीत तो बनती है यार। एक ऐसी स्टोरी चल रही है आजकल सोशल मीडिया पर जो प्रूव करती है कि फैशन और ग्रेविटी की कभी भी नहीं बन सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ वुमेन एक पेयर ऑफ ज़ारा ट्राउजर्स को मजाक में पैंट्स ऑफ डेथ कह रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? उनका कहना है कि इन ट्राउजर्स को पहनकर वो ट्रिप हो गई हैं या गिर गई हैं, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। काफी सारे लोगों ने वीडियोस भी शेयर किए हैं जहां पर उन्होंने अपने फॉल्स और उनसे हुई इंजरीज दिखाई हैं बकायदा। अब सच क्या है और इंसिडेंट किस वजह से हो रहा है उसका कंक्लूजन निकालना अभी तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि फैशन फैबुलस होना चाहिए, ऑब्स्टिकल कोर्स नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम वाइड लेग या एक्स

एक्स्ट्रा लॉन्ग ट्राउजर्स पहन रहे हो, पहनते हो, और स्पेशली ऑफिस जाते वक्त, कम्यूट करते वक्त, या सबवे स्टेशन की सीढ़ियों पर फुदक फुदक कर चलते वक्त, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो जारा की पैंट्स हो या किसी और ब्रांड की पैंट्स हो। स्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ में बैलेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, बट ऑल द वुमेन आउट देयर हु आर वेयरिंग दोज कोरियन पैंट्स, वाइड लेग या एक्स्ट्रा लॉन्ग ट्राउजर्स पहन रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया अर्लियर, यू हैव टू बी जस्ट अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। और इसी बात पे मेरी तरफ से एक रिमाइंडर है कि घर पहुंचते ही सबसे पहले शूज उतारो, उसके बाद अपनी ये पैंट्स उतार कर अपने पजामाज में आ जाओ एंड रिलीफ पा जाओ। और इसी के साथ मेरे भी घर जाने का टाइम हो चुका है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग ड्राइव, कॉफी ब्रेक, स्कूल ड्रॉप ऑफ, या फिर ऑफिस कम्यूट, या फिर तुम घर पर ही मेरे साथ बैठे हुए हो। तुम्हारे बिना मिर्ची मॉर्निंग्स सिर्फ मेरे लिए मॉर्निंग्स है। और अब टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। मेरा हैंडल याद रखना मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। बाय बाय।

वन क्वालिटी विच डिसाइड्स कि आप पक्के 90s किड हो, और वो ये कि आपको ये भले याद नहीं रहेगा कि आधे घंटे पहले हम जिससे मिले थे उस इंसान का नाम क्या है, लेकिन हमें ये नाम हमेशा याद रहते हैं। So be proud of the fact कि भले ही हमारी मेमोरी प्रेजेंट में हो रही चीजों को लेकर फैब ना हो, लेकिन 90s में और अर्ली 2000s में क्या क्या घटा सब हमें सीन बाय सीन याद रहता है। तभी तो खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप, मैं और मिड्डे मोहब्बत। तो चलते हैं यार उस जोन में जहां हमारी यादें तरोताजा रहती हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: खूब जमा था रंग जब मिल बैठे थे तीन भाई, सोहेल, सलमान एंड अरबाज।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And today I'm going to talk about the film प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन अगर अरबाज जैसा बड़ा भाई हो तो डरना तो पड़ेगा ना यार। And well, अरबाज को कास्ट करने से पहले काफी सारे एक्टर्स को अप्रोच किया गया था टू प्ले द रोल, इंक्लूडिंग अजय देवगन। बट इवेंचुअली सोहेल खान, हु बाय द वे वाज मेकिंग हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द फिल्म, ही डिसाइडेड टू कैश अप ऑन द फैक्ट कि अगर अरबाज प्लेज द रोल तो ये बात प्लस पॉइंट होगी, सिंस दो रियल लाइफ ब्रदर्स वुड बी सीन टुगेदर ऑन स्क्रीन। एंड दिस वाज द फर्स्ट फिल्म जहां से सलमान के शर्टलेस होने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये भी कोई प्लान्ड नहीं था, तो क्या था बताती हूँ आपको इन अ वाइल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ जाने जाना गाने के लिए सलमान वेंट शर्टलेस एंड इट बिकेम अ ट्रेंड एज वेल एज अ ट्रोल, लेकिन ये चीज प्लान नहीं थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। So what really happened was कि the designer Vikram Fadnis was designing the outfits for the film प्यार किया तो डरना क्या, और सलमान के लिए उन्होंने एक डीप नेक टी शर्ट तैयार करवाई थी। लेकिन जब सलमान wore the shirt तो उनकी बॉडी जो कि बिल्ड होती जा रही थी उसमें बल्क आ गया था, मसल्स आ गए थे और फिटिंग जो है वो शर्ट की गड़बड़ा गई और शूट में डिले हो गया। एंड वाइल वेटिंग फॉर जस्ट अ शर्ट सलमान सजेस्टेड कि यार शर्टलेस से शूट कर लिया जाए क्या, बट सोहेल ने मना कर दिया। ही सेड यार ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें थोड़ा अटपटा लगा। लेकिन फिर उन लोगों ने एक बार इस लुक को ऑन स्क्रीन टेस्ट करके देखा तो इट वाज लुकिंग गुड एंड दिस इज हाउ पहली बार सलमान वेंट शर्टलेस। और उसके बाद तो उन्होंने ऐसी कमिटमेंट कर दी टू द शर्टलेस लुक कि उन्होंने फिर अपनी भी नहीं सुनी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: The song O O Jaane Jaana जो हमने सुना वो असल गाना नहीं है.
3: नब्बे की गप्पे.
2: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, ओ जाने जाना गाने की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद जतिन ललित से गलती से ओरिजिनल गाने की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई. The final take was deleted accidentally. और eventually उन्होंने वो रिकॉर्डिंग इस्तेमाल की जो कि रफ पैच था और इसीलिए रिकॉर्ड किया गया था टू गेट एन आइडिया कि गाना सुनाई कैसा देगा. भाई साहब, इनके रफ पैचेस भी इतने नीट थे कि फाइनल टेक मान लिया गया उसे. और मेरी अगर कोई 90s में रफ कॉपी देख लेता ना तो मुंह फेर लेता. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: कल ही मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई और वो भी यही बोल रहा था कि यार एक गरम चाय की प्याली प्यार से पिलाने वाली घर वाली चाहिए। आज की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में बस यही सिंप्लिसिटी चाहिए और कुछ नहीं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अब देखो, मेरे दोस्त को ऐसी लड़की मिलती है कि नहीं मिलती है तो उसकी किस्मत ही जाने, लेकिन फिलहाल हमें एक चीज मिल गई है एंड दैट इज मान ना मान करो गानों की पहचान। और आज के वो दो गाने मुझे मिल चुके हैं बॉस, जो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे मिक्स किए हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा गाना कौन सा है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये दोनों मिक्सेस में दो गाने छिपे हुए हैं और आपको इन धुनों को सुनकर पहचानना है कि वो दो गाने कौन से हैं। तो फटाक से सुनो।

ओकी डोकी, अगर आपको जवाब समझ में आ गया है तो देरी किस बात की यार, फौरन मुझे डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम एंड साथ ही साथ इन दोनों गानों का नाम भी लिखकर मुझे भेजो, और साथ में कोई क्यूट सा मैसेज अगर आप कर सकते हो तो कर देना यार। कहना कि हम आरजेस तो बड़े जाने जाते हैं लोगों का दिन बनाने के लिए, लेकिन आपको पता है हम आरजेस का दिन कौन बना सकता है? आपका एक क्यूट सा मैसेज। तो कर दो फिर अभी के लिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पहले बता देती हूँ, विच इज मिर्ची सारा। अब अगला गाना आ रहा, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: क्रिकेट में हैट्रिक तो हमने सुनी है, लेकिन आज मैं आपको गानों की कॉपी की हैट्रिक बताती हूँ।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड द सॉन्ग इस गाने का म्यूजिक वॉज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम दिस सॉन्ग।

मैं ये सोच रही थी कि ये म्यूजिक है या फिर वो लेफ्ट ओवर जिसे मम्मा डिफरेंट फैंसी तरीकों से फिर से खाने के लायक बना देती हैं टाइम टू टाइम। हाँ, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जुए याद है आपको?
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आप भी सोच रहे होंगे कि सारा, ये जुओं को याद करने वाली भी कोई बात होती है? बात है यार, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाओ कि आपने कभी सोचा ही ना हो कि यार ये जुएं आजकल कहीं दिखाई नहीं देती। हम 90s के किड्स जैसे ही स्कूल जाना शुरू करते थे तो हमारा जुओं से जूझना शुरू हो जाता था। हर संडे लाइसिल और कंघी हमारी बेस्ट फ्रेंड होती थी, जिसमें जुओं वाली कंघी अलग और लिखो वाली कंघी अलग। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्यों इन्हें याद किया। एक्चुअली आज जब मैं अपने नेफ्यूज और नीसेस को प्रिम एंड प्रॉपर देखती हूँ ना, तो एक्चुअली सोचती हूँ कि हम एज 90s किड्स कितने झल्ले थे यार। हम जो जुओं से जूझा करते थे बचपन में, आज के बच्चों के हेयर एंड स्किन केयर रूटीन देख रहे हैं। और देखो, जज मत करना, लेकिन आज अगर मुझे कहीं जू दिख जाती है ना, तो मेरी डर के मारे नहीं, एक्साइटमेंट के मारे चीख निकलेगी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: डियर किसमी बार,
1: यादों को चिट्ठी।
0: बचपन में तुम्हारा नाम लेने में भी शर्म आती थी, लेकिन तुम्हें खाने में नहीं। ऊपर वाला जाने तुम्हारा ये नाम क्यों था, लेकिन मूड को चकाचक करने का तुम्हारा काम खूब था। कभी इलायची तो कभी प्लेन जेन, लाल कलर पैकिंग में तुम मिल जाती तो आई यूज्ड टू गो इनसेन। तुम्हारा सही था, 1 रुपए की आती थी। चॉकलेट बार खाने के जब 5 रुपए ना होते तो तुम 1 रुपए में 5 रुपए की चॉकलेट बार की जगह फिल कर जाती थी। बर्थडे पर जब स्वीट्स बांटने का टाइम आता था ना, तो सबको टॉफी बांटी जाती थी, लेकिन मेरे खास दोस्तों के लिए किस्मी बार तुम ही आती थी। तुम्हें खाना भी होता था और खाने के बाद दांतों में जो तुम अटक कर अपनी याद छोड़ जाती उसे हटाना भी होता था। लेकिन तुम्हारी एक बात अच्छी लगी मुझे कि लोग बदल जाते हैं, तुम्हारी पैकिंग बदल गई, लेकिन तुम्हारा टेस्ट अभी भी वही का वही है। आज भी जब कभी तुम्हारा पूरा पैकेट लेकर आती हूँ ना, तो स्कूल टाइम के उसी जोन में चली जाती हूँ जब तुम्हारा पैकेट बर्थडे पर बांटने के लिए आया करता था। तुम्हारी मीठी इलायची फ्लेवर की याद में तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: Cassette ke side B ka chautha gana.
3: Mirchi, 90s cassette.
2: नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज में चोर बाजारी।
4: चोर बाजारी दो नैनों की पहले थी आदत जो हट गई।
2: आपने कभी इस गाने के बोल को ध्यान से सुना है? This song has beautifully explained कि कैसे एक लड़का लड़की अपने ब्रेकअप के बाद भी एक केमिस्ट्री शेयर कर सकते हैं। वो अलग बात है कि मूवी की स्टोरी इस तरीके से अनफोल्ड होती है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते वाला डायलॉग ना इस सिचुएशन में भी बाधा बना। But in real life there are many friendships which develop into relationships and then both people realize कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं लेकिन हम सफर नहीं and then they continue being friends without bringing in the relationship वाला difference and it is here जब ये गाना इस सिचुएशन पर एकदम apt हो जाता है। दो इस गाने की म्यूजिक इतनी यूफोरिक है कि इंसान अक्सर इसके बोल पर ध्यान देना भूल ही जाता है लेकिन नाउ व्हाइल आई प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू इसके बोल सुनते हुए गौर जरूर कीजिएगा उस पर जो मैंने कहा। बट नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से कि हम है राही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। यहाँ के अलावा मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मिल जाऊंगी जो कि है मिर्ची सारा। आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा बाकी हम मिलेंगे ना यार सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। अभी के लिए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।

Mitchie. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद जारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब के फादर जीपी सिप्पी साहब एक लॉयर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यस यस यस, वो फिल्म मेकर थे, लेकिन उससे पहले, पार्टीशन से पहले कराची पाकिस्तान में वो एक लॉयर थे। फिर पार्टीशन के बाद बॉम्बे आ गए, वहां से ये फिल्म बनाने की दुकानदारी कैसे शुरू हुई एक बार एक इंटरव्यू में रमेश सिप्पी साहब ने शेयर किया था।
1: वो जब आए यहाँ 47 में तो ऑब्वियसली उन्हें नहीं समझ में आया होगा कि अब क्या किया जाए। सडनली सब कुछ हो गया और आना पड़ा, तो फ्लैट सिस्टम वगैरह शुरू किया था बॉम्बे में, बेच रहे थे तो कुछ फिल्म वालों को बेचा, तो वहां से मुलाकात हुई उनके साथ। और उनका शौक तो था ही, उनका कहीं ना कहीं दिल हमेशा करता होगा कि कुछ फिल्मों में कुछ हो जाए। एंड फाइनली कुछ 1951 में देवनंद और निम्मी और श्यामा, इन तीन को लेकर एक फिल्म बनाई गई, सजा। फर्स्ट फिल्म वॉज सजा। तो ये शुरुआत हुई उनकी और धीरे धीरे वो बढ़ते गए।
0: इसी बात पे हम भी आगे बढ़ते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब के फादर जीपी सिप्पी साहब पार्टीशन के बाद बॉम्बे आ गए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। पहले उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, फिर फिल्मी लोगों से मिलने जुलने लगे तो फिल्म मेकिंग का काम भी शुरू किया। 50s में रमेश सिप्पी साहब अक्सर फिल्मों के सेट्स पे जाते थे, अपने फादर को मेहनत करते देखते थे और बहुत कुछ सीखते भी थे। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: काफी कुछ उनको करना पड़ा, जब आप सीख भी रहे हैं और नए धंधे में जा भी रहे हैं तो पेनल्टीज भी साथ साथ देनी पड़ती है। खैर आखिर में उनका स्पिरिट कुछ ऐसा रहा कि मैं तो कुछ करके ही दिखाऊंगा। उसी जोश के साथ मेरा भी जोश पैदा हुआ, उनके जोश के साथ मैं भी जोशीला बन गया। बचपन से चाहता था कि मैं भी कुछ करूं। मैं तो स्कूल में पढ़ रहा था तो बाकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन कभी कभी स्टूडियो चला जाता था तो वो वायर्स और लाइट्स के बीच में फंसे हुए इस खूबसूरत और अजीब सी दुनिया में पहुँच गए और अच्छा लगा। ऐसा लगा कि शायद कभी मौका मिले तो हम भी कुछ कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा उस वक्त ध्यान नहीं दिया क्योंकि पढ़ाई करनी थी। लेकिन फिल्मों का शौक पैदा हो गया और फिल्में देखने शुरू की, वहीं से इंस्पिरेशन मिली। उस वक्त स्कूल वगैरह थे नहीं फिल्म एजुकेशन के, फिल्म ही एजुकेशन, उन्हीं से सीखना पड़ता है।
0: और मेरे ख्याल से इसी तरह से सीखना ज्यादा अच्छा रहता है, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस लेते हुए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको पता है फिल्म मेकर रमेश सिप्पी साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर कुछ फिल्मों में काम भी किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई उनके फादर जीपी सिप्पी भी फिल्म मेकर थे ना, तो उनके सेट्स पे ये हंसते खेलते कूदते पहुंच जाते थे और ऐसे ही काम भी कर लिया। अपने इस एक्टिंग स्टंट के बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: 7 बरस की उम्र थी मेरी, शहनशाह फिल्म में मैंने मेन लीड वाले बच्चे का काम किया जब वो छोटे थे। रंजन साहब साउथ के बड़े एक्टर थे उस वक्त, और कामिनी कौशल के साथ एक दो लाइन का सीन था, बस अम्मी अम्मी अम्मी करके वो लिपट जाते हैं। पीरियड ड्रामा था। उसके बाद भी आगे चल के मैंने एक विलन का रोल प्ले किया, जग्गू दादा। ये भाई बहन फिल्म बनी 56 होगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। टिपिकल जो ट्राइप गंजी, गले में रुमाल, पान वान चबा के स्ट्रीट के दादा, बच्चों के साथ बदमाशी और उस टाइप का।
0: बस ऐसी बदमाशी करते करते ये लड़का इतना बड़ा फिल्म मेकर बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब की स्कूली पढ़ाई के बाद उनके फादर जीपी सिप्पी साहब ने उनको लंदन भेज दिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इनका वहाँ पे दिल ही नहीं लगा, क्योंकि इनका दिल तो फिल्म के सेट्स पे लगा हुआ था ना, जहाँ ये बचपन से जा रहे थे। तो इन्होंने अपने पापा को बोला कि दिल नहीं लग रहा, पापा ने वापस बुला लिया। इस बारे में सुनिए रमेश सिप्पी साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: वहाँ से भी भाग आए तो यहाँ आके कॉलेज भी ज्वाइन किया मैंने, मॉर्निंग क्लासेस सुबह 7 से 10, ऑफिस स्टूडियो जहाँ भी देखते रहे। और वहाँ सिखाई कोई एजुकेशन तो थी नहीं, वही एजुकेशन थी जो देख रहे थे हम सेट्स पे, कैसे क्या कौन क्या कह रहा है, कोई डायलॉग पढ़ रहा है, कोई बता रहा है, कोई रिहर्सल्स चल रहे हैं, ऐसे कुछ। और आगे बढ़ते रहे। मैंने तो वो साधना जी के चप्पल भी उठाए हैं मेरे महबूब के सेट पर। तब मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ असिस्टेंट करने गया था, 17 बरस की उम्र से लेके 25 बरस की, 8 साल काफी काम किया।
0: और इनका इतना काम करना इनके बहुत काम आया, क्योंकि तभी तो लड़के ने एक दिन ऐसा बढ़िया काम किया कि शोले जैसी फिल्म डायरेक्ट कर दी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रमेश सिप्पी साहब ने अपने ग्रोइंग अप इयर्स में फिल्मों के सेट्स पे जा जाकर फिल्में बनाना सीख लिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बचपन में वो अपने फादर जीपी सिप्पी साहब की फिल्में जो है उनके सेट्स पर चले जाते थे, फिर जब थोड़े बड़े हुए तो उनके दोस्तों और फिल्म मेकर्स के फिल्म के सेट्स पर भी जाते थे। ऐसे एक फिल्म के सेट पर उनको थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी, सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक पहली फिल्म जिसके सेट पर मैं गया था, जौहर महमूद इन गोवा, बहुत बड़ी हिट हो गई, लेकिन 2-3 साल लग गए बनाने में, और उसमें मैं सेट पे धीरे धीरे मेरे कदम इस तरह बढ़ने लगे कि जौहर साहब ने फाइनली कह दिया, यश जौहर साहब वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, तो उनको कह दिया कि भाई ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, तो आई हैड टू कीप क्वाइट, क्योंकि भाई कहते हैं कि कैमरा यहाँ क्यों नहीं लग सकता, आपका काम नहीं है डायरेक्टर या किसी को कहना, वो डायरेक्टर का काम है और कैमरामैन का काम है, आप सुनिए देखिए आगे चल के जब आप बनाएंगे तो की। पर ऐसे ही सीखता आदमी, गलतियां भी करना जरूरी है
0: जी, गलतियां नहीं करते तो फिर ऐसी ऐसी फिल्में कैसे बनाते। अंदाज, सीता और गीता, शोले, शान, शक्ति, सागर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब 21 साल की उम्र में ही एक फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन गए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई कैसे ना बनते, उनके पापा फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जीपी सिप्पी साहब। नहीं भाई देखो ऐसा है, रमेश सिप्पी साहब बचपन से फिल्मों के सेट्स पर जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखना शुरू किया, अपने फादर की फिल्में, उनके दोस्तों की फिल्मों के सेट्स पर गए। काफी कुछ सीखने के बाद उन्होंने ये अचीव किया। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: फिर एक फिल्म हमने प्रोडक्शन हमारी शुरू हुई मेरे सनम, आशा पारेख विश्वजीत के गाने बहुत बड़े हिट हुए थे और अच्छी चली थी फिल्म, बहुत अच्छा वो रहा लर्निंग पीरियड। धीरे धीरे हम हमारी बात सुनने भी लगे लोग, एक तो शायद इसीलिए कि मैं प्रोड्यूसर का बेटा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कुछ अच्छी बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली ये सारे एक्सपीरियंसेस ने हेल्प किया। फिर मैंने जो मेजर फर्स्ट टाइम आई टुक क्रेडिट, आई वॉज गिवन द क्रेडिट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन ब्रह्मचारी, उसका फिर आई वॉज मच मोर एक्टिव ऑन द सेट्स हेल्पिंग, सेट्स पे भी मैं डिस्कस करने लगा कि अगर ऐसा करें तो, और वो अप्रिशिएट भी हो और वैसे किया भी गया,
0: फिल्म को भी काफी अप्रिशिएट किया गया। ब्रह्मचारी वाज सुपरहिट और इसका ये गाना भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: भाई रमेश सिप्पी साहब बचपन से अपने फादर जीपी सिप्पी साहब की फिल्मों के सेट्स पर हंसते खेलते कूदते रहते थे। स्कूल के बाद इनके फादर ने इनको बिजनेस विजनेस सीखने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी भेजा, लेकिन ये वहाँ से भाग आए क्योंकि इनका दिल तो फिल्म मेकिंग में लगा हुआ था। कई फिल्मों के सेट्स पर फिल्म मेकिंग सीखने के बाद 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी में इनको एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रॉपर क्रेडिट मिला। इस फिल्म के सेट्स पर एक और चीज हुई जिसके बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में रमेश सिप्पी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: ड्यूरिंग ब्रह्मचारी मैंने शम्मी साहब से बात की कि कुछ मैं करना चाहता हूँ, आपकी तरफ से हाँ मिलती है मुझे तो मैं आगे बढ़ूँ, तो ये ऐसी बातें हुई और मैंने उनको थोड़ा सा आइडिया सुनाया, जिसमें लेकिन शम्मी कपूर डांस गाने वाला आदमी और ऐसा मैच्योर रोल, मैंने उनसे कहा आपने काफ़ी किया नहीं है, कुछ थोड़ा हटके कर कोशिश कीजिए, शायद अच्छा लगे आपको। कुछ दिनों बाद ठीक है कर लेते हैं, शुरू हो गया मेरा करियर भी शुरू हो गया।
0: लेकिन एक छोटी सी मुश्किल भी आई, करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब ने एज डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म के लिए जो कहानी चूज की उसको काफी ऑपोजिशन मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1971 की फिल्म अंदाज, जो दो ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने पार्टनर्स को खो दिया है, मतलब एक विडो है एक विडोअर है, दोनों सिंगल पेरेंट्स हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। इस बारे में रमेश सिप्पी साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: मैंने जब पहली फिल्म बनाई तो एक रिस्क लेने का विचार किया कि कोई बात नहीं देखते हैं, और पिताजी मेरे जो थे वो बहुत ही बड़े दिल वाले थे और जो मुझे अच्छा लगा वही मुझे करने दिया। उन्होंने कहा जब कुछ फ्रेश चीज करने जा रहे हैं तो ऑपोजिशन तो होगी, लोग इमीडिएटली तो नहीं कन्विंस हो जाएंगे कि भाई आप सही बात कर रहे हैं, नहीं नहीं हीरो हो हीरोइन हो नाच गाने हो ऐसे ही होना चाहिए। उस वक्त चलती थी फिल्में और सही अपनी जगह सब सही है, ऐसी बहुत सी फिल्में उस वक्त चली भी साथ साथ। आई थिंक आई जस्ट मेड अ चॉइस कि ये फिल्म पहली हो तो लोगों को लगेगा एक थोड़ा सा हटके काम करना चाह रहा है ये लड़का।
0: और ये लड़का एक और लड़के को इस फिल्म में गेस्ट रोल करने के लिए लेकर आ गया, वो लड़का जो सुपरस्टार बन चुका था, राजेश खन्ना साहब। और खन्ना साहब ये रोल क्यों ना एक्सेप्ट करते, उन्होंने अपने करियर की जो पहली फिल्म साइन की थी वो रमेश सिप्पी साहब के फादर जीपी सिप्पी साहब की ही फिल्म थी, 1967 की राज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: जिंदगी

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: क्या बात कर रहे हैं, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। हेमा मालिनी सीता और गीता फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थी। सुनिए इस बारे में डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: सच बात तो ये है कि मुमताज जी को अप्रोच किया लेकिन उस वक्त वो बहुत सी फिल्में कर रही थी तो डेट्स नहीं थी और हम चाहते थे कि बस साल भर में कंप्लीट हो जाए और रिलीज हो जाए। सोचा फिर जिनके साथ काम किया है हेमा जी के साथ उनसे पूछा तो वो थोड़ा सा पहले आप मुझे एक विडो का रोल देते हैं फिर आप कहते हैं डबल रोल, तो वो भी दिलीप कुमार ने किया हुआ रोल जो राम और श्याम टाइप का रोल। चैलेंज, शी टुक द चैलेंज एंड डिलीवर्ड।
0: और सीधी साधी नाजुक हेमा मालिनी जी को उन्होंने पंखे पे चढ़ने के लिए कैसे कन्विंस कर लिया था?
2: बहुत सिंपल सी बात है, मैं खुद चढ़ गया उस पे। मैंने पंखे पर चढ़कर उनसे कहा देखिए ये बिल्कुल मजबूत है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, देखिए। थोड़ा सा मैंने स्विंग भी कर लिया ताकि उनको लगे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने देखा, काफी देर तक देखती रही कि ये अब गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे जो अजीज भाई थे उन्होंने बड़े मजबूती से वो पंखा फिट कर दिया था, तो जैसे मैं उतरा उन्होंने सांस ली और ये हमारा पहला शॉट था भाई।
0: कभी पंखे पे चढ़ रही थी, कभी रस्सी पे चल रही थी, कभी हवा से बातें कर रही थी। बड़ी मजेदार फिल्म है भाई सीता और गीता। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
3: हवा के साथ साथ,
4: अरे रे रे।
3: घटा के संग संग,
4: संभालना।
3: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्च।

0: डायरेक्टर शेखर कपूर ने एक बार कहा था कि हिंदी फिल्मों को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक शोले से पहले वाली फिल्में, एक शोले के बाद वाली फिल्में। फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये विभाजन वाली लैंडमार्क फिल्म शोले बनाने वाले रमेश सिप्पी साहब ने इसके बारे में क्या शेयर किया था कि ये कैसे प्लान हुई थी, सुनिए।
1: 1972 हमने सीता और गीता रिलीज की, काफी सक्सेसफुल रही, और फरवरी मार्च की बात होगी, मुलाकात हुई हमारी सलीम जावेद के साथ ये तय करने के लिए आगे क्या करेगी। एक टू लाइन आइडिया था उनके पास जो हमें पसंद आया, और सिप्पी साहब माय फादर उनको भी पसंद आया। एक और सब्जेक्ट था, काफी कंप्लीट स्क्रिप्ट थी जो मैं चाह रहा था कि हम बनाएं, तब तक शोले की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। मेरे पिताजी ने कहा नहीं, वो हो जाओ ये बनाओ। तो ये उनकी हिम्मत और ताकत थी कि एक इनकम्प्लीट सिर्फ स्टोरी आइडिया और पॉसिबिलिटीज नजर आई उनको, और उन्होंने कहा कि आप लोग इसको परस्यू कीजिए, द रेस्ट इज हिस्ट्री।
0: बताइए, बैठे बैठे इतिहास रच दिया इन्होंने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: हिंदी फिल्मों में वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश कमाल की टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म है 1980 की शान। आई थिंक इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो विलन शाकाल, उसका वो अड्डा, वो पूरा आइलैंड, वो मगरमच्छ, उफ तौबा। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: काफी मुश्किल था वो सेट लगाना। मैं एक्चुअली आर्ट डायरेक्टर को लंदन ले गया था और वहाँ हमने कंसल्ट करके जेम्स बॉन्ड के आर्ट डायरेक्टर से बातें की और उनके चीफ असिस्टेंट जो थे उनको लेकर और मेरे अपने आर्ट डायरेक्टर को मैं वहाँ ले गया। उनसे बैठकर समझकर हमने पूरा सेट डिज़ाइन किया, जिसके वहाँ बड़े बड़े ग्लास बनाए और उस ग्लास के पीछे हम समंदर देख सकते हैं जिसमें शार्क्स और वो क्रोकोडाइल और वो सब नज़र आए। तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में होता है, वो लंदन के टेक्निकलर लैब ने किया और पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ने वहाँ किया ताकि वो लगे कि बैठे हैं और पीछे से ये
0: पीछे से शार्क दिख रही है, उधर से क्रोकोडाइल दिख रहा है। क्या बात है, इस फिल्म का म्यूजिक भी क्या बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Mirchi. It's hot. Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

0: रमेश सिप्पी साहब ने चाहे बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई हों, लेकिन जो बनाई हैं वो बहुत स्पेशल हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर चाहे वो अंदाज हो, सीता और गीता, शोले तो चलो अलग ही लेवल पे आती हो, उसका तो एक अलग ही स्टेटस है। देन शान, सागर, शक्ति, शक्ति फिल्म में दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब साथ में, क्या इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ रमेश सिप्पी साहब को कुछ मुश्किलें आई, कुछ ईगो क्लैशेस हुए? इस बारे में सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: बिल्कुल सच बात बताऊं, मैं मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ये कहानियां गाड़ सकता था तो काफी इंटरेस्टिंग और हो सकता था, लेकिन दोनों ने इतने प्यार से काम किया, इतने रिस्पेक्ट, अमिताभ बच्चन साहब को बहुत रिस्पेक्ट थी दिलीप कुमार साहब के लिए और उनके काम के लिए, और उनको भी बहुत इज्जत थी। एक नया लड़का उभर रहा है, उसके साथ काम करने का शौक भी था, और दोनों ने मिलकर हमें बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि मुझे ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ा। अच्छे आर्टिस्ट लेने का फायदा तो है ना, सिर्फ उन्हें इंस्पायर करना जरूरी होता है, और कहीं थोड़ा सा इस तरफ ना चले जाएं, कहीं थोड़ा सा उस तरफ ना चले जाएं, वो संभालना पड़ता है। बाकी और कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने सब कुछ सही कहा, सही किया और हिला दिया लोगों के हृदय को।
0: एक्चुअली काफी अच्छी फिल्म है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: देखो, जिंदगी में पंक्चुअल होना बेसिकली ये प्रूव करता है कि भाई आप अपने कमिटमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं।
2: श्रुति, श्रुति, श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप, एंड जनरली वी हैव सीन दैट हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके स्टारडम का सबसे बड़ा ठप्पा है कि भाई वो किसी भी इवेंट या प्रेस मीट में फॉर दैट मैटर लेट आते हैं। बट कुछ ग्लोबल स्टार्स ने इस चीज पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सो वी ऑल नो अबाउट क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म द ओडिसी, जिसके प्रेस मीट एंड प्रमोशंस के लिए द ग्लोबल स्टार्स क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन एंड टॉम हॉलैंड वर इन इंडिया। अलग अलग जगहों पे वो अपने प्रमोशंस को लेके प्रेस मीट्स कर रहे थे, और जब बॉम्बे में ये थे तो दे वर ऑन टाइम, ऐसे पंक्चुअल दैट हमारे मीडिया फ्रेंड्स वेंट इनटू अ फ्रेंजी कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे टाइम पे कैसे आ सकते हैं लोग। एंड दिस एक्चुअली एक्सपोज्ड द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडियन सिनेमा, जहां किसी भी जगह हमारे सेलिब्रिटीज का लेट पहुंचना उनके स्टारडम का एक जीता जागता सबूत होता है। यस, आई एग्री दैट देयर आर एक्सेप्शंस लाइक अमिताभ बच्चन सर या फिर अक्षय कुमार, बट जनरली तो हम भी सच्चाई जानते हैं यार। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स हाई टाइम दैट हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं वो अपने कमिटमेंट्स को लेकर थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो जाएं, तो मजे ही आ जाएंगे यार। सोचने वाली बात, राइट? वैसे आप अपने लाइफ में जनरली पंक्चुअल होते हैं या आप भी लेट लतीफ वाले कैटेगरी में ही हैं? डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात होर सी
0: यार 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल,

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।